सुनिया पक्की फोर ट्वेंटी, सुनिया पक्की फोर ट्वेंटी, मार मार के अरे मार मार के चप्पल मेरी कर दी चप्पल मचंती, दुनिया फोर ट्वेंटी।

चुके हैं रेतने वाले सुन सब लेते करे कवाली अकल का अंधा गाट का थोड़ा दिल में मुहब्बत पाते टपाले जहाँ भी देखे कोई हसीना वही बजा दे बंटे दुनिया को ट्वेंटी।

0: ये मोटा बकरा मोटर साड़ी सुर में जानी, जहां भी तकड़ा इंजन देखा करती खंटम छंटी, दुनिया 420 दुनिया पक्की 420।
1: पक्की फोर

कौन हो भाई, बीवी बच्चे बहन और भाई सब है मतलब के जाए। जेब गरम तो यार हजार करकी हो तो कौन हो भाई। एक दिन इनको माल न दो फिर देखो फंटम की दुनिया 420 दुनिया पक्की 420 दुनिया पक्की 420 मार मार के चप्पल मेरी कर दी चप्पल दुनिया 420

0: Ujala Radio, your radio. Bel met de studio via 020 363 0808.
1: अजीज दोस्तों, हिंदुस्तान की आज़ादी की सालगिरह पर मैं और मेरे साथी आपको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं, और जिस शौक से आप आज़ादी का जश्न मनाने यहाँ आए हैं उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आज रात यौम आज़ादी के शानदार जश्न पर मैं और मेरे साथी आपके सामने एक कव्वाली पेश करने वाले हैं, मगर इससे पहले मुझे इतनी गुजारिश करनी है कि आज ये कव्वाली महज कव्वाली नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी का, मेरी मोहब्बत का बहुत बड़ा इम्तिहान बन गई है। हादसा अक्सर इंसान को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं और उसे फैसले का हक होता है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करे, मगर मेरे लिए तो वो दोराहा भी नहीं, मेरे लिए एक ही रास्ता है, एक ही फैसला, एक ही अंजाम। इसलिए आज इस भरी महफिल के सामने मेरा ये वादा है, या तो वो हाथ जिन्होंने मेरे गले में ये हार डालते हुए मोहब्बत की कस्में खाई थी मुझे दोबारा ये हार पहनाएंगे, या आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी।

मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

0: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

0: यूं ही साथ साथ चलते।
1: मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: ये तितलियां हैं, ये नींद का नशा जो आंखों में है भरा, तेरा है तेरा ले ले तू। खूबसूरत गाना है, लक धमाका गाना हियर बाय द वन एंड ओनली उजाला रेडियो। आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो अमित जयराम के साथ। खनीत लेकर फन द हिलक गफारियत गाना हियर बाय द वन एंड ओनली उजाला रेडियो। दैट वाज द स्टेम फनी वन मेरे दान सुनिधि चौहान, gebracht uit de film Rocky Handsome, फिल्म का नाम रहा और गाना का नाम रहा तितलियां।
1: और सुनना है तो सब्सक्राइब करो टी सीरीज।
0: दुनिया का मशहूर हिंदुस्तानी हिट रेडियो है ये, सुनो वालो हैज टू बी उजाला रेडियो। फाइंड द चिमेंट ऑफ स्टेम बाय द वन एंड ओनली उजाला। हिल के धमाका गाना का सेलेक्टेड और इस बार फिल्म खानदानी शफा खाना से। इन दे इज अ हिल के कुक

जिते जान भी दूं, मैं गवां ईमान भी दूं, तू ही सवेरा मेरा, तू ही किनारा मेरा। Geweldige gana toch, geweldige aanwaas, de stem van Dwani Bhanushali en Nikhil D'Souza. Filmkenamera haf, was het hier. I hope you enjoy the gana. Behoed het zie hij. Ja toch, je luistert naar Amir Jairam op Ujala Radio. Whatever you do, keep it on Ujala Radio. फिल्म का नाम है बदला हाउस, द स्टेम फॉर नेहा कक्कर एंड तुलसी कुमार। इन द कैटेगरी ओ गॉड।

ओ तेरे जैसे माशुका मुझे यार चाहिए, ना पैसा चाहिए ना ही करार चाहिए। या इनका तो खरी ओ गॉड वन मोर रिमिक्स ओ साकी साकी रे। या इस अफकोम से खाइट द फिल्म बटला हाउस।

तौबा तौबा तेरे प्यार में लुट गया इकरार में। दिस इज फनी वन मिनट ऑन सोनू निगम एंड शिल्पा राव इन देसी हिल का गाना द फिल्म देसी बॉयज वाज दैट। इफ यू लिसन क्लोज यू हियर द हिस ऑफ अ स्नेक। Heerlijke gevarieerde Ghana, speciaal op z'n week geleden geselecteerd hier bij de one and only Ujala Radio. Dunya Kamashur, Hindustani Hit Radio, Hit Ghana ka mega hit gesaat. Arisbar, Sonu Nigam Kewas mee samen met Shilpa Rao. Nee, ik moet mezelf corrigeren. Het is Kunal Ganjawala in

एक गुनाह कर लिया तुझे याद कर लिया। द हिल किस्तेम फॉर निमंत मिंद दान कुनाल गंजवाला। आई होप यू एंजॉयड गाना।

एक गुनाह कर लिया तुझे याद कर लिया, इसे आप सुन रहे हैं और दुनिया का मशहूर हिंदुस्तानी हिट रेडियो उजाला रेडियो डिस्टेंफनी मन बीने डंकुनाल गांजा वाला वसदात पनाहों में मोहब्बत की।

जहरीली रातें हियर बाय द वन एंड ओनली दुनिया का मशहूर हिंदुस्तानी हिट रेडियो हैज टू बी उजाला रेडियो ऑफ कोर्स। या तो 24/7 आपके लिए ऑफ द एफएम, ऑफ द डब एंड नेचुरल कोक ऑफ द इंटरनेट वर्ल्ड वाइड।

आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

ये उजाला रेडियो है। अब यहाँ से हम अपना हफ्तावार प्रोग्राम सबरंग आगाज करते हैं। हर एक सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। मैं हूँ आपकी हमसफर निशा। जहाँ से भी आप उजाला रेडियो का प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप मायूस नहीं होंगे, इसलिए क्योंकि छोटे और बड़ों को ध्यान में रख कर गीत संगीत सुनने को मिलते हैं। आप सुनने वालों को इस प्रोग्राम में एहतराम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज गीतों का नशा सर चढ़ कर बोलेगा। शुरू करती हूँ प्रोग्राम सबरंग से। ऐ खुदा हम सब की मुश्किलात को आसानियों में बदल दे, बीमारियों को तंदुरुस्ती में, गमों को खुशियों में। ऐ खुदा ये दुआ है, प्रार्थना है कि आप हमेशा खुश रहे, सलामत रहे और मालिक आपको हर बुरे

तुझे ढूंढता था मैं चारसू, तेरी शान जल जलाल हो। मजहबी गायन पेश था जगजीत सिंह की आवाज में। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के प्यास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल भी मिलेगी, और मिलने का मज़ा भी आएगा। जाने जग सखी मैं ही ना जानूं।

रूहानियत अंदाज में पेश था मजहबी और भक्ति संगीत। जरा सी बात पे हर रस्म तोड़ आया हूँ मैं दिल की बात जमाने से मोड़ आया हूँ। कदम कदम पे जो लगाई थी पाबंदियाँ सबने, मैं ख्यालों के पिंजरे को छोड़ आया हूँ।

शायराना अंदाज में आपने अभी ये गज़ल सुनी। ख़याम की मौसिकी थी, कलाम महान शायर जान निसार अख्तर का था, आवाज़ थी मुकेश जी की। ढूंढे नज़र नज़र, ढूंढे नज़र नज़र, मेरा चांद है किधर, किस राह में खो गया है वो, बेचैन कर रहा है, बेचैन कर रहा है ये रास्ता मुझे मुद्दतों से। मिल जाए काश वो, मिल जाए काश वो, तो मुकम्मल हो जाए सफ़र।

रोमांचित अंदाज में पेश था ये दो गाना, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में, एन दत्ता की मौसीकी थी, कलाम था शायर जान निसार अख्तर का। उजाला रेजो के सुनने वाले, चलिए वक्त की सुई को जरा सा पीछे घुमा देते हैं और उस दौर में जहां आवाज में एक जादू था, एक रूह थी, कुमार बड़ा बंकवी साहेब की लिखी बोल है, महान नौशाद साहेब का संगीत और सरताज केएल सैगल की आवाज में पेश है ये सुनहरा नगमा, ए दिले बेकरार झूम।

सुनहरी दौर का महान गायक कुंदनलाल सहगल की आवाज में पेश था ये गीत। जैसे मैंने इस गीत से पहले कहा था, वक्त की सुई थोड़ी से पीछे घुमा दिया है, तो आइए सुने उस दौर का एक और गीत गायिका अमीर बाई कर्नाटकी की आवाज में।

चंदा देश पिया की जा, सुनहरी दौर का प्रसिद्ध गायिका अमीर बाई कर्नाटकी की आवाज थी। संगीतकार खेमचंद प्रकाश का सजाया संगीत, दर्शकों लिखने वाले थे पंडित इंदिरा चंद्रा। उजाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं। जैसे मैंने अक्सर कहा, उजाला रेडियो के जरिए आपको हर तरह का प्रोग्राम सुनने को मिलते हैं। हमारे अजीज सुनने वालों, अब जो गाना आप सुनेंगे वो है फिल्म अलबेला से। इस गाने को से रामचंद्र ने सजाए है और उन्होंने लता मंगेशकर जी के साथ मिलकर इसको गाया भी है। ये संगीत आपके दिल को, जी हाँ, झूमने पर जरूर मजबूर कर देगा। तो आइए सुनते हैं एवरग्रीन सॉन्ग शोला जो भर के।

आपने सुना फिल्म अलबेला से ये बेहतरीन गाना से रामचंद्र और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। ये संगीत आज भी हमारे दिलों को ताज़ा कर देता है। यकीनन इस गीत सुनने से आपके चेहरे पर एक मुस्कान तो लाई होगी, है ना? आई है जो बहार तुम्हारे ही नाम से, रंगीन कायनात तुम्हारे ही नाम से, हर फूल मुस्कुरा के यही कह रहा है आज, आबाद है ये बाग तुम्हारे ही नाम से।

सदाबहार नगमा पेश था मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, चित्रगुप्त की मौसिकी थी, कलाम था शायर मजरू सुल्तानपुरी का। चलिए इस सुहाने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं अगला गाना से।

खूबसूरत अंदाज में पेश था ये नगमा। मौसिका रवि की मौसिकी थी, कलाम शायर राजेंद्र कृष्ण का था और कानों में रस खोलने वाले आवाज थी महेंद्र कपूर की। हम प्यार में जलने वालों को हर रात कयामत लगती है, जब याद किसी की आती है सांसों में जलन बढ़ जाती है। वो आग जो तुमने सुलगाई है, हमने उसे दिल का चैन कहा। अब राख बनना है फुरकत में, मतलब स्काइडिंग में, और दुनिया तमाशा देखती है।

छू लेने वाले नगमा पेश था। नगमात शायर राजेंद्र कृष्ण की थी, मौसिकी मदन मोहन का। तेरे जाने के बाद दिल संभलता नहीं, हर खुशी अब हमें भाती नहीं। वक्त के दरिया में बह गए ख्वाब, अब कोई लम्हा हमें हंसाता नहीं।

फिल्म बेगुनाह में से ये गीत लिया है। शंकर जयकिशन ने संगीत से सवारे थे, बोल था शायर शैलेंद्र का। अब लीजिए पेश है लता मंगेशकर से ये नगमा।

आप सभी सुनने वालों को फिल्मी दुनिया में एक बार फिर एहतराम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अब यहाँ से हम अपना हफ्तावार प्रोग्राम फिल्मी दुनिया शुरू करते हैं। तो आइए प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में ये गीत।

सुमन कल्याणपुर की आवाज में आपने अभी ये नगमा सुना, जिसके बारे में हम आज बातें आगे बढ़ाएंगे। पिछले प्रोग्राम में बतलाई थी कि तलत महमूद ने जब सुमन कल्याणपुर को एक कॉन्सर्ट में गाते हुए सुना तो उनकी आवाज से मुतासिर हुए, मगर इसके बाद क्या हुआ? तलत महमूद ने बिना वक्त जाया किए सुमन के बेमिसाल टैलेंट को पहचाना और उन्हें उस वक्त की सबसे बड़ी रिकॉर्ड कंपनी HMFA से मिलवाया। शुरू में कंपनी के लोगों को लगा कि सुमन की आवाज में थोड़ा सा कच्चापन है, लेकिन तलत महमूद ने हार नहीं मानी। उन्हीं की कोशिशों से नेहतीन फिल्म फैक्टर में फिल्म दरवाजा के लिए सुमन का सबसे पहला डुएट रिकॉर्ड हुआ और ये गाना उन्होंने खुद तलत महमूद के साथ गाया था। उसके बोल है, एक दिल दो है तलबगार। जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में बतलाई थी, सुमन जी की सिर्फ एक अच्छी सिंगर ही नहीं थी, वो मुंबई के मशहूर सर जी स्कूल ऑफ आर्ट से पेंटिंग भी सीख रही थी, लेकिन मौसीकी अब उनकी किस्मत बन चुका था। साल नेकतीन अख्तम फैफ्तख में उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उन्होंने मुंबई के एक बड़े बिजनेसमैन रामानंद कल्याणपुर से शादी कर ली। रामानंद साहेब सुमन के सबसे बड़े फैन और सपोर्टर थी, क्योंकि सुमन जी को कॉन्ट्रैक्ट और पैसे के मामले में होशियार नहीं थी, इसलिए उनके शौहर हर रिकॉर्डिंग पर अपने बीवी के साथ जाते थे और उनका करियर संभालते थे। आइए सुने फिल्म बदतमी से ये गीत।

अभी आपने फिल्म बदतमीज में से ये गीत सुना। इसके गीतकार था हसरत जयपुरी, संगीत था शंकर जयकिशन। आप सुन रहे हैं सुमन कल्याणपुर जी की संगीत सफर। सुमन जी के संगीत सफर में एक ऐसी चीज थी जो उनके लिए वरदान मतलब ब्लेसिंग भी थी और श्राप भी। उनकी आवाज का सुर और टेक्सचर बिल्कुल महान गायिका लता मंगेशकर जैसा था। उस दौर में रेडियो सेलोन पर जब गाना चलते थे तो सिंगर्स के नाम नहीं बतलाए जाते थे, तो लोग अक्सर धोखा खा जाते थे और सुमन जी के गानों को लता का समझ लेते थे। यहाँ तक कि कई बार ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स पर गलती से लता मंगेशकर का नाम लिखा जाता था, लेकिन सुमन जी ने कभी इस बात का बुरा नहीं माना। उन्होंने हमेशा लता जी की इज्जत की और फिर आया नेहती शास्त्र का गोल्डन एरा, जब बॉलीवुड में एक बड़ा हंगामा हुआ। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहेब के दरमियान गाने की रॉयल्टी को लेकर अनबन हो गई और दोनों ने साथ गाने से इनकार कर दिया। उस वक्त हर म्यूजिक डायरेक्टर परेशान था कि रफ़ी साहेब की ऊंची और सुरीली आवाज़ के साथ कौन जोड़ी बनेगा। तब सबको याद आई वो थी सुमन कल्याणपुर। फिर क्या हुआ? जी हाँ, उन्होंने उस दौरान रफ़ी साहेब के साथ एक के बाद एक 100 फेर तक से ज़्यादा खूबसूरत डुएट गाए। अब हम आपको उन्हीं गानों में से एक गाना सुनवाते हैं जो आज भी लोग इतनी ही शौक से सुनते हैं और लुत्फ उठाते हैं। तो लीजिए आप भी सुमन जी और रफ़ी साहेब के ये डुएट को शौक से सुनें।

क्या बात है, इस गाना को सुनकर आपको झूमने का मन करता तो होगा, है ना? सुमन जी ने सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि मराठी, बंगाली, गुजराती समेत 10 से ज़्यादा जुबानों में गाना गाए हैं। वो हमेशा बॉलीवुड की चमक धमक और पार्टी से दूर रहती थी। उन्हें घर पर रहना, अपने बागीचे में काम करती थी और पेंटिंग करना पसंद था। सुमन जी और लता जी की कहानी संगीत की दुनिया की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है। उन दोनों की आवाज़ इस कदर मिलती जुलती थी कि लोग अक्सर फर्क नहीं कर पाते थे। उनके दरमियान रिश्ता हमेशा इज्जत का रहा, लेकिन फिल्मी दुनिया की सियासत पॉलिटिक्स की वजह से दोनों के बीच एक अनदेखा मुकाबला ज़रूर था। उस दौर में लता जी का बॉलीवुड पर कब्जा मोनोपोली था। बहुत से म्यूजिक डायरेक्टर्स सुमन जी को रिजर्व लता के तौर पर देखते थे। जब लता जी के पास वक्त नहीं होता था या उनकी डिमांड ज़्यादा होती थी तो सुमन जी को बुलाया जाता था। इस वजह से सुमन जी को वो मकबूलियत और वो क्रेडिट नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। सुमन कल्याणपुर की करियर का सबसे सुनहरा दौर तब शुरू हुआ जब लता मंगेशकर और रफ़ी के दरमियान रॉयल्टी के मसले पर अनबन हुआ और ये सुमन जी के लिए एक नियमित फ़ायदा साबित हुई। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ कई मशहूर डुएट्स गाए, जैसे कि आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर। ये डुएट, जैसे मैंने कहा, आवाम इसे बहुत पसंद किया, पर आइए सुने इन दोनों की ये दो गाना मोहब्बत भरी अंदाज में।

मोहब्बत भरे अंदाज में आपने अभी सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी साहिब से ये दो गाना सुना। जब कुछ सालों बाद लता जी और रफ़ी साहिब से सुलह हो गई तो सुमन जी को मिलने वाले गाने फिर से कम हो गए। सुमन जी हमेशा लता जी को बहुत इज्जत करती थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में मजाक में कहा कि शायद हम दोनों खुदा से आवाज़ मांगने के लिए एक ही लाइन में खड़े थे और उन्होंने हमें आधी आधी आवाज़ दे दी। बस फर्क ये था कि लता जी दुनिया में पहले आ गई। सुमन ने हमेशा कहा कि वो कभी लता मंगेशकर की नकल नहीं की, उनकी आवाज़ कुदरती तौर पर ऐसे ही थी। सुमन जी और लता जी ने अपने पूरे संगीत सफर में सिर्फ एक डुएट साथ गाया था जिसका नाम था कभी आज कभी कल। फिल्म थी चांद जो नेहती नेखना फैक्टर में रिलीज हुआ था। पर प्रोग्राम आगे बढ़ाने से पहले आइए सुने सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में ये गीत।

फिल्म मुनीम जी में से ये गीत लिया है। गाने वाले थी सुमन कल्याणपुर, जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। अब हम आपको एक दिलचस्प कहानी बतलाएंगे सुमन जी और लता जी के बारे में। ये सुमन कल्याणपुर की जिंदगी का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला और जरा दुख भरा किस्सा है। उस वक्त क्या हुआ था हम आपको विस्तार में बतलाएंगे। नई खंतीन त्वीय शस्त्र की भारत चीना की जंग के बाद मशहूर शायर कवि प्रदीप ने ये गाना शहीद जवानों के याद में लिखा था। उस दौर में म्यूजिक डायरेक्टर से रामचंद्र और लता मंगेशकर के दरमियान किसी बात पर अनबन थी, इसलिए से रामचंद्र ने सुमन कल्याणपुर को इस गाने के लिए चुना था। सुमन जी ने इस गाने की पूरी तैयारी की और बहुत दिनों तक रिहर्सल भी की थी। सुमन जी ने न्यू दिल्ली में होने वाले बड़े नेशनल इवेंट पर इस गाने को स्टेज पर लाइव गाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। फिर ऐसे क्या हुआ, क्यों हुआ, बातें आगे बढ़ाते हैं। ये इवेंट 27 जनवरी ने हितेंद्रिय शास्त्र को न्यू दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में था, जहां प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे और सुमन जी भी स्टेजों में मौजूद थी और पोडियम पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। लेकिन अचानक बैकस्टेज इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स शुरू हो गई। कुछ अहम लोगों का कहना था कि इतनी भरे और कौमी नेशनल लेवल के गाने को देश की नंबर वन गायिका को ही गाना चाहिए, तो आखिरी लम्हात लास्ट मिनट में लता मंगेशकर को राजी किया गाने को। सुमन जी पोडियम पर जाने वाली थी तब उसे पता चला कि अब वो ये गाना नहीं गाएंगी, बल्कि उनकी जगह लता मंगेशकर स्टेज पर जाकर ये गाना गाएंगी। पर लता मंगेशकर ने स्टेज पर जाकर ये गाना इस कदर दर्द और खूबसूरती से गाई थी, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गया। सुमन कल्याणपुर के लिए ये बहुत बड़ा इमोशन का झटका था, क्योंकि उनके हाथ से एक ऐसा मौका निकल गया जो उन्हें हमेशा के लिए अमर इमॉर्टल कर दिया। बातें आगे बढ़ाने से पहले हम आपको वो अमर गीत सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में।

जी हाँ, ये लता जी की आवाज़ है, लेकिन ये अमर गीत पहले सुमन कल्याणपुर को दिया गया था गाने के लिए। इस हादसे के बाद सुमन कल्याणपुर और से रामचंद्र के दरमियान प्रोफेशनली थोड़ी दूरी आ गई थी, लेकिन उन्होंने एक दूसरे की इज्जत करना कभी नहीं छोड़ा। संगीतकार से रामचंद्र ने कहा कि वो समझते थे कि सुमन जी के साथ ना इंसाफी हुई थी, लेकिन इंडस्ट्री के दबाव के आगे वो भी मजबूर थे। फिर भी उन्होंने बाद में कुछ फिल्मों में साथ काम किए, जहां उस दौर के बड़े बड़े सिंगर्स सिर्फ बड़े और मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम करते थे, वहीं सुमन जी का दिल बड़ा था। अगर कोई नया या गरीब प्रोड्यूसर उनके पास आता और कहते कि उनके पास पैसा कम है, तो सुमन जी बिना पैसा के भी गाना गा देती थी। सुमन जी को फिल्मी दुनिया की चमक धमक से दूर रहना पसंद था। उन्होंने बहुत कम इंटरव्यूज दिया और ना ही कभी किसी के बुरा कहा। जब उन्होंने गाना छोड़ा तो वो अपना पूरा वक्त अपनी बेटी अलका और बाकी परिवार के साथ बिताती थी। सुमन जी कहती थी कि सुकून बाजार में बिकने वाली चीज़ नहीं, ये आपके अंदर होना है। सुमन कल्याणपुर जी की 69 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गई। उनकी बेमिसाल आवाज़ हमेशा दिलों में जिंदा रहेंगी।

अभी आपने फिल्मी दुनिया सुना, जिसमें हमने महान मारू शख्स सुमन कल्याणपुर जी के बारे में बयान किया। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए सुनवाते हैं मन्ना देश साहब से ये गीत।

दिल छू लेने वाला गीत पेश था। मन्ना डे की आवाज और खुद उन्हीं की मौसिकी थी, कलाम था मधुकर राजस्थानी का। अब आइए सुने महेंद्र कपूर और आशा भोसले से ये दो गाना।

खूबसूरत अंदाज में पेश था ये दो गाना। रवि की सजाया संगीत था बोल हसन कमाल का। अब आइए सुने गीता दत्त और हेमंत कुमार की आवाज़ों में ये दो गाना।

मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। किशोर कुमार से आपने अभी ये गीत सुना। संगीत देने वाले थे संगीतकार राहुल देव बर्मन, गीतकार थे शायर गुलजार। कोई उस शख्स सा दुनिया में कहाँ होता है, लाख चेहरों में, लाख चेहरों में जिसे दिल ने चुना होता है। हम उस मोड़ पे आ पहुँचे हैं मोहब्बत में, जब जब वो मेरी जिंदगी में बहार बन के आए।

खूबसूरत अंदाज में पेश था ये नगमा आवाज थी अलका याग्निक की। छुपा लेते हैं जो हर गम को अपने मुस्कुराहट में, वो अक्सर टूट जाते हैं अकेले तन्हाई की हालात में। छुपाते हैं दर्द दिल दुनिया की नजरों से इस तरह जैसे कोई आग दबा लेता है अपने सीने में।

0: कमाल का नगमा आपने अभी स्वर की मालिका लता मंगेशकर की आवाज में सुना। मौसिकार खयाम की मौसिकी थी, कलाम था शायर नक्श लियालपुरी का। जिंदगी जिंदगी में अगर खुश रहना चाहते हो तो एक असूल बना लो, जो खोया उसका गम नहीं और जो पाया वो किसी से कम नहीं, जो नहीं मिला वो एक ख्वाब है और जो मिला वो लाजवाब है। इसमें मनदी क्या सुनाने को जा रहे हैं, मीठी आवाज में लीजिए पेश है।
1: सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

जी हाँ, भरकता गीत आपने अभी मनदे साहब से सुना। अगला नगमा पेश है, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी साहब की।

रोमानियत अंदाज में पेश था ये नगमा, मौसिका रवी की मौसिकी थी, कलाम था शायर शकील बदायूनी का। इसी अंदाज में पेश है अगला नगमा एक बार फिर मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में।

दिल छू लेने वाले नहमा पेश था, मौसिकार खयाम की मौसिकी थी, कलाम था शायर कैफी अजमी का। और ये नगमा में चार चांद लगाने वाली आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी साहब की। अगला नगमा पेश है मुकेश जी की मधुर आवाज़ में। जब

0: सुंदर गीत पेश था संगीतकार सलील चौधरी का, संगीत रचना, गीत रचना था जुगेश का। अब आशा भोसले का सुनाने को जा रही है, लीजिए पेश है।
1: बॉय ओ बॉय, बॉय ओ बॉय,

अभी आपने आशा भोसले की आवाज में ये गीत सुना, आशा जी जिसकी आवाज में नजाकत थी, लचक और शोखीपन थी। अब आइए सुने लता मंगेशकर से अगला गीत।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं। उजाला रेडियो के जरिए आप सुनने वालों को हर तरह का प्रोग्राम सुनने को मिलते हैं, जैसे कि देश विदेश का समाचार, नए से नए गीत संगीत और सुनहरी दौर के भूले बिसरे गाने भी सुनने को मिलते हैं। बदलते वक्त के साथ जो अपना रंग दिखाते हैं, मतलब निकलते ही पल भर में भूल जाते हैं, खुदी में इतने डूबे हैं ये खुदगर्ज इंसान के औरों के दर्द को बस एक तमाशा बनाते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए।

संगीतकार उषा खन्ना का सजाया संगीत था और शायर जावेद ने दिल की कलम से ये तर्श को लिखे थे। मोहब्बत, मोहब्बत अधूरी रह गई, ख्वाब अधूरे रह गए, होंठ हंसे मगर दिल की जख्म गहरे रह गए। वक्त ने सिखाया हंस के जीना, मगर क्या करे, यादों की सहारे ही हम ठहरे रह गए।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू

0: 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है FM DAB+. तोर घर में, तोर ऑटो में. तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर. देश भर में उजाला रेडियो. द क्रोस्ट क्या हार्ट द बेस्ट उजाला रेडियो.
2: तुझे लगे ना नजरिया.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

वो कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

खुशी के साथ गमी है, पैदा इसके साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। ज़वाख के रहने वाले परिवार उमेद बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 85 साल की आयु में खैफन तख्त खियार औद बहन मरखरित उमेद का भाई बहनोई वाल्दो उमेद का सार शरीदा रियाज और रहाना के मामा आरी का ममुमा ससुर मिखा और काया के नाना होफदोर्प माननबर्ग द्वीप का रहने वाला श्रीमान रोनाल्ड हेनरी लक्ष्मण की मृत्यु हार्लेम के स्पार्न खास्टहाउस सिकन हाउस में हो गई है। रोनाल्ड के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। ज़्वाख से परिवार

मार उम्मीद बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते शनिचर को 85 साल की आयु में क्वेवन तख्त यार और बहन मरखरित उम्मीद का भाई बहनोई वाल्दो उम्मीद का सार शरीदा रियाज और रहाना के मामा आरी का ममवा ससुर मिखा और काया के नाना हाउफडोर्प मानेनबर्ग द्वीप का रहने वाला श्रीमान रोनाल्ड हेनरी लक्ष्मण की मृत्यु हार्लेम के स्पार्न गास्टहाउस सिकनहाउस में हो गई है। रोनाल्ड के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आज मंगलवार के रात में 6:30 से 7:15 तक vanavond van 6:30 tot 6:45 uitvaartcentrum Haarlemmermeerke Moerdalei hoofdweg oostzijde 1100 nieuw Vennep me aur artike dagkriya ye aane wale bife ko kiye jayenge din mein 11:30 donderdag aanstaande 11:30 crematorium Kennemerland Vergierdeweg 271 हार्लेम में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06-46-33-58-02 सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो परिवार लक्ष्मण और परिवार उम्मीद के दुख में शामिल है।

Radio Jalan Radio के जरिए कॉफी चाय मेरा शो यहीं से शुरू किया जा रहा है. Zoom in the headlines उजाला रेडियो के जरिए पेश किया जाएगा. जरूर आप सुन लेना. आज के प्रोग्राम में हम आनंद चंद्रिका सिंह से बात करने वाले हैं. नतीजा वो लुक्स ऑन द वेयर पर

इस तरह से आपने नगमा को सुने हैं और ये भी फिल्म रामायणा का नगमा है। रणबीर कपूर इस फिल्म में काम के हैं। सुनवाला उजाला रेडियो का प्रोग्राम कॉफी चाय मेरा शो शुरू हो गया है।

यू आर उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम आपको ये नगमा सुनाने को जा रहे हैं। आज की इस शाम के प्रोग्राम में सुनिए सुन वालों ये नगमा कि मेरा दिल ये पुकारे आ जा।

बिल्कुल ट्रावल तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं सुनवालो, तो डीजे आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो। दिस ga jij binnenkort trouwen? Door wie baan honen wel het? Door shadi honen wel het? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Radio Jalan Radio के जरिए कॉफी चाय मेरा शो यहीं से शुरू किया जा रहा है. Zoomtain the headlines उजाला रेडियो के जरिए पेश किया जाएगा. जरूर आप सुन लेना. आज के प्रोग्राम में हम आनंद चंद्रिका सिंह से बात करने वाले हैं. नतीजा वो लुक्स ऑन द वेयर पर

इस तरह से आपने नगमा को सुने हैं और ये भी फिल्म रामायणा का नगमा है। रणबीर कपूर इस फिल्म में काम के हैं। सुनवाला उजाला रेडियो का प्रोग्राम कॉफी चाय मेरा शो शुरू हो गया है।

यू आर उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम आपको ये नगमा सुनाने को जा रहे हैं। आज की इस शाम के प्रोग्राम में सुनिए सुन वालो ये नगमा कि मेरा दिल ये पुकारे आजा।

Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het op. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूड ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

खुशी के साथ गमी है, पैदा इसके साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टर्डम और बाकी नीदरलैंड से परिवार मथुरा बिंदेसरी सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 82 साल की आयु में त्वेयंतख्तियार औद स्वर्गीय श्री ब्रिजलाल मथुरा की विधवा लड़कन महेंद्र राम उर्मी सुरेश गीता मुकेश सुदेश और स्वर्गीय सुनील की माँ अनिल गायत्री शांता और अमीरा के सास सभी

अम्स्टर्डम वेस्ट की रहने वाली विधवा विल्मा मथुरा बिंदेसरी सिंह की मृत्यु ओंजे लीफोफ्राउ गास्टहाउस वेस्ट में हो गई है। अम्स्टर्डम और बाकी नीदरलैंड से परिवार मथुरा बिंदेसरी सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते शुक्रवार को 82 साल की आयु में त्वियन तख्त अख्तियार और स्वर्गीय श्री ब्रिजलाल मथुरा की विधवा लड़कन महेंद्र राम उर्मी सुरेश गीता मुकेश सुदेश और स्वर्गीय सुनील की माँ अनिल गायत्री शांता और अमीरा के सास सभी लड़कन के नानी आजी पर नानी पर आजी अम्स्टर्डम वेस्ट की रहने वाली विधवा विल्मा मथुरा बिंदेसरी सिंह की मृत्यु ओंजे लीफोफ्राउ गास्टहाउस वेस्ट में हो गई है। अर्थी से विदाई लेने की मौका है कल बुध के रात में 7 बजे से 8 बजे तक ऐतफर्ड सेंट्रम वेस्ट खार्डे के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शुक्रवार दिन में 3 बजे किए जाएंगे। वेस्खार्ड क्रीमाटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में।

और मृत्यु समाचार सुनिए। अमस्टरडम और बाकी नीदरलैंड से समस्त परिवार बिंदेसरी सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 82 साल के आयु में त्वेयन तख्त ख्यार और स्वर्गीय पिता श्री मनीराम बिंदेसरी सिंह और स्वर्गीय माँ श्री सामराजी दर्शन के बेटी सोनी आंद्रे राज बेनी एरिक किशोर रोसिल मीला आईफी रॉय और स्वर्गीय क्रिस के बहन साध भौजी के ननद दो छोटकू के बड़की और सभी लड़कन के फुआ मौसी नानी और आजी अम्स्टरडम वेस्ट की रहने वाली विधवा विल्मा मथुरा बिंदेसरी सिंह की मृत्यु अम्स्टरडम के ओंजेल लीफोफ्रावास्टहाउस वेस्ट में हो गई है। समस्त परिवार बिंदेसरी सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते हुए शुक्रवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त ख्यार और स्वर्गीय पिता श्री मनीराम बिंदेसरी सिंह और स्वर्गीय माँ श्री सामराजी दर्शन के बेटी सोनी आंद्रे राज बेनी एरिक किशोर रोक्सिल मीला आईफी रॉय और स्वर्गीय क्रिस के बहन साध भौजी के ननद दो छोटकों के बड़की सभी लड़कन के फुआ मौसी नानी और आजी। अम्स्टरडम वेस्ट की रहने वाली विधवा विल्मा मथुरा बिंदेसरी सिंह की मृत्यु अम्स्टरडम के ओंजेल लीफोफ्रावास्टहाउस वेस्ट में हो गई है। अर्थी से विदाई लेने की मौका कल बुध के रात में 7 बजे से 8 बजे तक एथफार्ट सेंट्रम वेस्ट खार्ड के मुर्दालय ओक मेरवैख 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्प में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शुक्रवार के दिन में 3 बजे फ्रेडक द्री उर किए जाएंगे वेस्ट खार्ड क्रिमाटोरियम ओक मेरवैख 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्प में।

माता परसाद के सबसे बड़े पतो सभी लड़कन के मामी अम्स्टर्डम वेस्ट की रहने वाली विधवा विल्मा मथुरा बिंदे श्री सिंह की मृत्यु अम्स्टर्डम के ओंजे लिफ्राउ वास्टहाउस वेस्ट में हो गई है। अल्मेरा से सीला मथुरा और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते हुए शुक्रवार को 82 साल की आयु में त्वेन तख्त अख्तियार औत ननद सीला मथुरा के सबसे बड़की भौजी स्वर्गीय ससुर श्री बड़का राम सेवक मथुरा और स्वर्गीय सास श्री जगदेई मथुरा माता प्रसाद के सबसे बड़ी पत्तो सभी लड़कन के मामी अम्स्टर्डम वेस्ट की रहने वाली विधवा विल्मा मथुरा बिंदे श्री सिंह की मृत्यु हो गई है ओंजे लिफ्राउ वास्टहाउस वेस्ट में, जो कि स्वर्गीय श्री ब्रिजलाल मथुरा के विधवा थी। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे कल बुध के रात में 7 बजे से 8 बजे तक एटफार सेंट्रम वेस्खार्ड के मुर्दालय अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में, और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शुक्रवार दिन में 3 बजे फ्रेदखांस्तांद द्री उर किए जाएंगे वेस्खार्ड क्रीमाटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में। ये सूचना है कि निवास स्थान पर बैठक नहीं किए जाते हैं। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतफार्त फुरजोरखिंग परिवार मथुरा और परिवार बिंदे श्री सिंह के दुख में शामिल है।

और मृत्यु समाचार सुनिए। अल्मेर से ननद सीला मथुरा और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते हुए शुक्रवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त यार औत। ननद सीला मथुरा के बड़ी भौजी, सबसे बड़की भौजी, स्वर्गीय ससुर बड़का राम सेवक मथुरा और स्वर्गीय सास जगदेई मथुरा

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: यू आर
2: दिस इज एडविन गेरतसन फ्रॉम द एनवीबी। Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de एनवीबी verkeersinformatie.
3: नमस्ते, मैं हूँ अलका याग्निक और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो।

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या द बेस्ट उजाला रेडियो
3: तुझे लगे ना नजरिया
4: संगीत के रंग उजाला रेडियो पर

मुंडन संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश Voormaar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.

उजाला रेडियो है। सुनने वालों, इस चून के साथ आरंभ किया जा रहा है एक और प्रोग्राम दर्द दिल, दर्द दिल जिसमें दर्द भरी गीतों हम आपको सुनाते हैं और उन गीतों जिन्हें सुन करके, जो कि सुन करके दिल को सुकून मिलता है और कभी कभी दिल का दर्द और बढ़ जाता है, इसलिए तो नाम रखे गए है दर्द दिल। और चलिए पहला गीत पेश है प्रोग्राम में मेहदी हसन की आवाज में।

मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो मगर मुझे तुम भुला ना सकोगे। मेहदी हसन की आवाज में आप गीत को सुनें।

मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मुकेश जी की आवाज शंकर जयकिशन, म्यूजिक कंपोजर, 1959-59 की फिल्म कन्हैया के गीत। और इस फिल्म कन्हैया में काम किए उन दिनों राज कपूर, नूतन एंड ललिता

तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। गीत आप सुने लता जी और किशोर कुमार से, 1975 के फिल्म आंधी से निकाला हुआ। म्यूजिक कंपोजर राहुल देव बर्मन और इस फिल्म में काम किए संजीव कुमार के साथ सुचित्र सेन। और ये उजाला रेडियो है, प्रोग्राम का नाम दर्दे दिल। मुकेश जी एक बार फिर हिस्सा ले रहा है।

जिंदगी क्या है, बस यादों की बारात और जख्मों की बारात। मुकेश जी की आवाज में गीत आप सुने। 1975 की फिल्म नेखंतिन फैफन जीफन तक की फिल्म फरार से निकाला हुआ कल्याण जी आनंद जी इस गीत पर साज को दिए और फिल्म में काम किए अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार और शर्मिला टैगोर।

न्यूज जलन रेडियो के जरिए कॉफी चाय मेरा शो यहीं से शुरू किया जा रहा है। जुम थी द हेडलाइंस उजाला रेडियो के जरिए पेश किया जाएगा, जरूर आप सुन लेना। आज का प्रोग्राम में हम आनंद चंद्रिका सिंह से बात करने वाले हैं, नतीजा वो लुक्स ऑन द वेयर पर

इसी तरह से आपने नगमा को सुने हैं और ये भी फिल्म रामायणा का नगमा है। रणबीर कपूर इस फिल्म में काम के हैं। सुनवाला उजाला रेडियो का प्रोग्राम कॉफी चाय मेरा शो शुरू हो गया।

यू आर उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम आपको ये नगमा सुनाने को जा रहे हैं। आज की इस शाम के प्रोग्राम में सुनिए सुन वालो ये नगमा कि मेरा दिल ये पुकारे आ जा